नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः।

ॐ श्री साई साधुमानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय

उन्होंने समाज से जाति भेद, बुरी आदतें, नशाखोरी और अस्वच्छता के प्रति जीवन भर जन जागृति की। वे गांव गांव घूमते और प्रबोधन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और नैतिकता का पाठ पढ़ाते। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं गांव की सफाई करने की परंपरा शुरू की। बाप हो ईश्वर सगळ्यांमध्ये आहे, प्रत्येकाची मदत करा, सेवा करा, प्रत्येकावर प्रेम करा, यही संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। वैसे ही राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। भजन और समाज प्रबोधन के माध्यम से उन्होंने ग्राम विकास, एकता, स्वच्छता और नैतिक मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का प्रसिद्ध ग्रंथ ग्राम गीता आत्मनिर्भरता और आदर्श गांव का जीवन सिखाता है। उनका संत साहित्य में अमूल्य योगदान है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से भजन लिखे और गाए। भजन में भाव सरोपरि है, ईश्वर भाव प्रिया है, यद भावम तद भवति। और इसी प्रेम भाव के संदर्भ में राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, मनी नाई भाव मणि देवा मना पाव। आओ उनके ही श्रीमुख से सुनते हैं।

वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य जपिए बोलो नित्य

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य

हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि हरि हरि बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि नाम जी नित्य नित्य